0: इंसान पहली बार फोन क्यों नहीं चकदा?
1: हेलो किदां जटिए?
0: फोन क्यों नहीं चकदा? केड़ी माना बिजी सी?
1: ओ यार बिजी वाली केड़ी गल, हवा चलदी है नहीं सुनिया?
0: हवा चलदी है या तेरी हवा खराब हुई है? एक गल सुन ला, सुधर जा नहीं तो तेरे सर चढ़ के मर जाना।

हजूर कहिंदे न सच धन वणजो, सच धन संचो कबू ना आवो हारे। संसार ते आके जिन्हां ने सच दा तन नाम दा तन खटिया, नाम दा वणज कीता है, संसार ते आउणा उन्हां दा ही सफल होया। जिन्हां ने निरा दुनियावी धन दी दौड़ विच अपना जीवन बसर कर लिया, हजूर कहिंदे ने कर औगण पछोतावण। क्यों? इसलिए कि ए तां कपड़ रूप सुहावना, छड दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना, हुक्म किए मन भाम दे राह पीड़े अगे जावना, नंगा दोजक चालिया तां दिसे खड़ा डरावना, कर औगण पछोतावना। ए अवगुण है क्योंकि निरंकार ने सानू ए अमोलक श्वासां दी पूंजी बख्शिश कीती है। आख्या नौ हिस्से जिहड़े समय दे हन ना ऐ बंदे, ए तेरे वास्ते हन, खुशियां माण आनंद माण, अपने कार विहार कर। पर श्वासां दा दसवां हिस्सा जिहड़ा है ओ हर मनुख ने ईश्वर दे लेखे लाउणा, जे नहीं लावेगा तां फिर सजा दा भागी होवेगा। अगों लई प्रतीत भी जांदी रहिंदी है ते सजा दा भी भागी हुंदा है। इसलिए पाप दी खट्टी

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।
1: अल्लाह

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant. Tradition, taste, and something new.

0: No, sorry, mate.
1: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
3: We can get it in, but it won't be for a few days.
4: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
5: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
6: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
5: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
6: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जिना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जिना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जिना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जिना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जिना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।
4: हर किसी दे दिल विच किसी ना किसी दी याद आउंदी है। कोई भुल जांदा, कोई छड़ के अगे तुर जांदा। इन्हां दी कदी कदी याद

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: No, sorry, mate.
3: No, we don't have that part.
2: Have you tried down the road?
4: We can get it in, but it won't be for a few days.
5: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobileovervan.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: गलियां गलियां घूमी ते पैरां नी जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना
3: चाचा केड़ा चाचा
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
4: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935
5: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है
6: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया हाँ
5: एक कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है
6: तो भुगतो

0: पानी दा बुलबुला।
1: हवा के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के कोशे कोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है, जो कि 103.2 FM स्टूडियो पर और www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सभी खैरियत के साथ होंगे, जहां तक मेरी आवाज पहुंची होगी आपको ठीक ठाक होगा, और दुआ करते हैं आप सभी खैरियत के साथ रहें और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, उम्मीद रखता हूं आप हमारा साथ निभाएंगे। अच्छे और प्यारे गीत पेश करने की कोशिश करूंगा।

तो दोस्तों अब आप गीत सुन रहे थे, मैंने तो बहुत एंजॉय किया इस गीत को, यकीनन आप दोस्तों ने भी एंजॉय किया होगा। इसी तरह के गीत आते रहेंगे प्रोग्राम में, आप सुनते रहेंगे, क्योंकि जनाब गीत ऐसे हैं, जो भी गीत हो गीत गीत ही होता है जनाब, अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को ये गीत पसंद होता है, किसी को वो पसंद होता है, लेकिन गीत अगर कोई बुरा हो तो फिर वो गीत बने ही क्यों, गीत तो बनते इसीलिए एंजॉय करने के लिए। तो दोस्तों अब जो आने वाला गीत है ये भी बहुत ही प्यारा है, तो आइए मिलकर सुनते हैं।

था और अब जो आने वाला गीत है उसकी क्या तारीफ करूं, ये तो आप सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा कैसा गीत है ये। जैसे अच्छा मौसम है इसी तरह का ये गीत है जनाब, तो आप सभी की नजर करता हूं, तो इंजॉय कीजिएगा।

धुन थी, क्या मौसीकी थी और क्या लिरिक्स थे। इतना इंजॉयबल गीत था कि मुझे कभी उम्मीद है कि आप सभी ने मेरी तरह एंजॉय किया होगा। और अब देखिए जनाब, प्रोग्राम में आगे कौन कौन सा गीत आने वाला है। सभी ऐसे गीत हैं कि आप सोचेंगे कि यार आमिर को आज क्या हो गया, क्या आमिर का मूड है, ऐसे गाने सुना रहा है कि जनाब अब क्या तारीफ करें। नहीं नहीं नहीं नहीं, तारीफ नहीं करें भाई, आप सिर्फ गीत सुनते जाइए और इंजॉय कीजिएगा और एंजॉय करते रहिएगा जब तक हमारा और आपका ये सफर है।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

दोस्तों आपने इस गीत को सुना, मुझे तो आपने बताया नहीं, मैं सोच रहा था आप मुझे बताएंगे कि यार ये गीत कहाँ से लाया और आज कैसे प्ले कर दिया। तो जनाब यही है हमारे प्रोग्राम की जो सिफ्त और जो हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है, इसमें ये कोशिश होती है कि आपके लिए अच्छे अच्छे और म्यारी गीत पेश करें ताकि आपका टाइम बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। ताकि जैसे हमारा टाइम तो ऐसे गुजरता है, 3 घंटों का सफर होता है और पता चलता है जनाब सिर्फ 1 घंटा हमने प्रोग्राम किया, वो भी घंटा पूरा नहीं बल्कि आधा घंटा ही किया है। इतना प्यारा सफर होता है आपका और हमारा कि सफर ऐसे कटता है जैसे वो कहते होते हैं ना कि पलक झपके ये हो गया, तो पलक झपकने से ही ये 3 घंटे गुजर जाते हैं जनाब। तो चलते हैं अब बातें कम अगले गीत की जानिब।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: A classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

तो वक्त हमें उस मोड़ पे ले आया है जहां हम कहते हैं कि जनाब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ जाता है, हम आपसे इजाजत चाहते हैं। उम्मीद रखता हूं आज का प्रोग्राम आप सभी ने पसंद किया होगा। हमारा साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद रखता हूं आइंदा भी जब हमारा प्रोग्राम होगा आप हमारा साथ निभाएंगे। तो आमिर शहजाद को इजाजत दीजिएगा, हमारी जानिब से खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Something new is cooking at Jinnah Restaurant. Come and discover our exciting new menu, packed with even more flavors and dishes to enjoy. Try our signature favorites, including Kashmiri Dum Pukhat, Desi Fried Fish, Desi Style Chuza, and Namkeen Gosht. Plus, discover our new lunch menu with delicious dishes at great prices. Bring your family and friends and experience the new menu today. Jinnah Restaurant, 109 Leeds Road, Bradford. To book, call 01274-733-732. Jinnah Restaurant, tradition, taste, and something new.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-21-21 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014, सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप किसी खास तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं तो उसे जना रेस्टोरेंट ब्रेडफर्ड में मनाएं।
3: बड़ी तकरीबात के लिए जना मार्की में 150 मेहमानों की गुंजाइश है। मेहंदी, निकाह, सालगिरह और खानदानी जश्न के लिए बेहतरीन।
2: छोटी गैदरिंग के लिए जना इवेंट सुइट में 50 मेहमानों की गुंजाइश है।
3: मौका कोई भी हो, लजीज खाने और अपनों के साथ अपनी खुशियों को यादगार बनाइए। जना रेस्टोरेंट, लीड्स रोड, ब्रैडफर्ड।
2: बुकिंग्स और मजीद मालूम के लिए कॉल करें 01274-733-732। जना रेस्टोरेंट, हर मौके को बनाए खास।

0: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्न सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want even more from Sunrise Radio? Then join the Sunrise Radio Listener Club. It's completely free to join, and as a member, you'll get access to exclusive competitions, fantastic prizes, special offers, event updates, and more. Plus, be amongst the first to hear about what's happening at Sunrise Radio and exclusive opportunities just for our Listener Club members. Joining couldn't be easier. Simply visit sunrise.radio and sign up today. The Sunrise Radio Listener Club. More rewards, more opportunities, more for you.

जो भी देख यही पूछ है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुत्तियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसां चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्स लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसां पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: My favorite radio station, Sunrise Radio.
3: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move.

0: खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लिनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन ती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rich, check up, man. I found this time machine, man.
3: Forget the time machine.
2: No, just because you want to go back to your Afros and flares, man. Just leave it, man. Let's go back, man.
3: Nah, man.
2: It's cool, man. It's cool. Look. This go back to 1981.
3: Look, man. Look, please.
2: We got work to do.
3: Come on, man.
2: Nah, man. Just leave it.

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

अरे बनो मेरी जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, क्यों सताती है रे जाना, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, मेरी जान जाती है तू नहीं आती है, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ।